0: खुशी खजाने विद आरजे अर्शिता शीला।
1: न्यू केल्ता इदिरा 90.4 FM रेडियो निनादा, इदु जनमनदा नादा तरंगा।

मुख लेंगे साहित्य लॉयड्रेगो अनि रोशन क्रास्ता, संगीत विनिल वेगस, गायले ले जावना साथ प्रजुत डेसा, गीत चिंतनान एताई।